जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी गूढ़ की सोई पहुँचे नाई मनसा ससमाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से वणजारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै त सन्मुख से कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतर आत्मा समाले आप छठ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे।

मन तन सास जीव कर नाहु नेह चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुलया सुंदर सुगड़ सुजान मेता वेता गुण गोविंद अमुलया बड़भाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम हुए करती कर्म अनेक कोमल बंधन वाधिया नानक कर मैं लेख जो भाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ शरणागति जाका बट प्रताप शांति।

बुझै तिल पल रहन न जाए। हर साध शरणागति नानक आस पुजाए। शन रुत सरद अडंबरो असु कत के हर प्यास जियो। खोजंती दर्शन फिरत कामिलिय गुणतास जियो। बिनकंत प्यारे न सूख सारे हार कंगन त्रिग बना। सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना। ईत उत न दिस दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ पास प्यास जियो। बिनवंत नानक धार कृपा मेलो प्रभ गुणतास जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी शांत। नानक प्रभ पूरन मिले द्वितीया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर। नानक ब्रह्म पै मिट गए रमन राम भरपूर। शांत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पो जियो। जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रो जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेविया। हार डोर सिंगार सब रस

पाए नानक प्रीतम रस मिले। लाहा लै पुरथाए रचना राज जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत ते आई है अंत न पारावार। डाढ़ रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा या वरना कोई। डाढ़ गारुड़ तुम सुनो हर बसै मन माहे। गुरप्रसादी हर पाईए मत को परम बुलाए। सो साहु साचा जिस हर तन रास। सो साहु साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिसा वास। रूड़ी बाणी हर पाया गुर सबदी विचार। आप गया तो कटिया हर वर पाया नार। सोयना रूपा संचिए तन काचा बिकसार। साहु सदाए संच तन दुबदा होए खुआर। सचियारी सत संचया सचो नाम अमोल। हर निर्मायल उजलो पत साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस। साचो ठाकुर मन वसै हों बलिहारी तेस।

जिसे त्याया पार ब्रह्मसो कल महता गा साधु संगत निर्मला अठसठ मजना गा जिस प्रभ मिलया अपना सो पुरख सभागा नानक

मरहे। हमरे राम नाम कह उबरे, वेद परोसे पांडे डूब मरहे। तरवर एक अनंत डार साखा पोहप, पत्र रस परिया

कीजै असुमेध जग की जय सोना गर्भदान दीजै राम नाम सरतो न पूजै छोड़

पूजय अस दान गज दान सहजा नारी ऊम दान ऐसो दान नित नित है की जय आत्म जाओ निर्मायल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तौ न पूजय मने न की जय रोस जमै न दी जय दोस निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै जसरथ राय नंद राजा मेरा राम चंद प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै।

चौथा मालमिल संसंगत सुभवंती सुन कात कथा सुखवंती सब किल विख पापल हंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कह हो कुरबानंती हर कथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नठ महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस कौ हो पल पल पाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट कावो मेरे गुर सिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ भाई जिना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक और हर मत हर जन नानक मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावै मन प्यास बहुत दरसावै रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस उपर रुच आवै कृपा करो जिस पुरख बिदाते सो सदा सदा तुद त्यावै कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी रिजावै सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै साई मत साई बुद्ध स्यान जित निमख न प्रभु बिसरावै संत संग लग इहो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो चर्च महामंगल रूप किश आ नाही दिसावै कहो नानक मोर्चा गुरला।

नमस्कार। जास जबत हो तो धार हाओ, जाकै सिमरन मिटहै धंध, जाकै सिमरन छुटहे बंद, जाकै सिमरन मूर्ख चतर, जाकै सिमरन खुलै उदर, जाकै सिमरन भौ दुख हरै, जाकै सिमरन तपदा टरै, जाकै सिमरन मुचत पाप, जाकै सिमरन नहीं संताप, जाकै सिमरन नित विगास, जाकै सिमरन कवला दास, जाकै सिमरन नित निदान, जाकै सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरि कोट भगतो दार करी, हरदास दासा दीन सर, नानक मात।

पूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुखे खीर जैसे रन में सखा परात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरखै बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अग

राम नाम गुरु भजनी बोलो संसभा में हो रस टोल हो गौर मत खोज लहो घर अपना बहुना गर्भ मजारा हे सच तीरथ नहावो हर गुण गावो तत् विचारो हर लिवलावो अंधकार जम जोहि न साकै हर बोलो राम प्यारा हे सतगुर पुरख दाता वरदाना जिस अंतर साच सो शब्द सम्माणा जिसको सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम पै पारा हे

लाए सोई बुझाए, भाव परम शरीर हो जाई है। आपे गुरु आपे देवै सचै सब सतगुरु सेवै, जरा जम तिस जोहे न साकै साचे सिउ बणि आई है। तिसना आगन जरा संसारा जल दर खपै बहुत विकारा, मन मुठोर न पाए कबहु सतगुरु बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड़ भागी साचा नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रव्या नहि केवल तिसना शब्द बुझाई है।

साधना हुई है। आपे जोड़ विछोड़े आपे आपे थाव थापे आपे सच्चा हुकम सच्चा बा सारा होर न हुकम ना हुई है। आपे लाए ले सुला गए गुर प्रसादी जाम का पौ भाग गए अंदर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख पूजा कोई है।

वैसला जनगाति आपे सुख निवासी है। सच्चा साहेब सची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आया वस्या घट अंदर टूटी नंगी फासी है। किसे भी तै किसा लाई सतगुरु सेवी सब सलाई सच्चा सब सदा मधुतम अंतर कमन प्रगासी है। देही काचे कागज मिकदारा बूंद पवै बंसै ढहत न लागै बारा कंजन काया गुरमुख बूझै जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौंका सुरत की कारा हर नाम भोजन सजय आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जिद घट हर नाम निवासी है। हौं तन बलिहारी जो सा

द्रौपदी लज्जा निवारण उदाहरण कमला कांत करहै कंतूहल आनंद बनौती ने संगा अमोघ दर्शन आजूनी संभाओ अकाल मूर्त जिस कदे नहीं खाओ अविनाशी अवगत गोचर साब किस तु सही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माछ काछ कूर कर्म आग्या औतरासी केशव चरत करह निराले कीता लोड़ हो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर भज कहाया।

ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कते पास लोई कतात लेखा होए त लिखिए लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही सालाह एती सुरत ना पाइया नदिया ते वाप वह समुंद ना जानिए है समुंद सहा सुल्तान किरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होनी जे तिस मनो ना विसरह।

तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा सिधा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर।

कार असंख मूरखंद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गालवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाक खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई।

हदूर कथना कथिन आवै तोट, काथे काथे कथी कोटि कोट कोट। देदा देलै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुकम चलाए राहो, नानक भिक्षा बेपरवाहो। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार। आख्यह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेरे के अग्गै रखिया, जित दिसै दरबार। महो के बोलन बोलिया, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, बड़ियाई विचार। करमी आवै कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया, सब आपे सच्यार। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया, भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जेत सभावा। वन पाने के नाए करी, जेती सिरठ उपाई। वेखा वन करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिया, नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई, ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोय न सुजई, जे तिस गुण कोय करे। सुनिया सिद्ध पीर सरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे न सकै काल। नानक भगता सा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिया मुख साला हनुमंद। सुनिया जोग जोगत तन भेद, सुनिया शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया सतसंतोख ज्ञान, सुनिया अठ सठ का इसनान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सेख पीर पात साह। सुनिया अंधे पावह राहो, सुनिया हाथ होवै असगाहो। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। मने की गत कही न जाए, जे को कह पिछै पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मनै सुरत होवै मन बुद्ध, मनै सगल भवन की शुद्ध। मनै मोह चोटा न खाए, मनै जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पत शिव प्रगट जाए। मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मनै पावह मोख द्वार, मनै परवार साधार। मनै तरै तारी गुर सिख, मनै नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंची पावह दरगह मान। पंची सोहे दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करै विचार, करती कै करण नाही समार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सत्यार, तौलै ऊपर केता भार।

अमल परवान, अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रही लिव लाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़ी कर है वख्याण, आख है बर्मी आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईशर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, नेते कीते होर करेह, ता आख न सकह केई के, जेवड पावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़े, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सोदर केहा सो कर केहा, जित वह सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परी सिव कही।

जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जग जग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन स्वर्गा माछे पयाले गावन रतन पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गावह जोद महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कारे कारे रखे तारे

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मंदा संतोख सरम पात झोल।

जपत मन धीरे। हमें छोड़ भई बैरागन तब साची सुरत समानी, अकुल निरंजन स्यो मन मानिया विसरी लाज लोकानी।

पहला दूर नाही मेरू प्र प्यारा सतगुर बचन मेरू मन मानिया। सतगुर बचन मेरू मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन बिदर मिल हर मिल या बर कामन धन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बीचारी। जस मन मानै अभिमान ता कौ हिंसा लोभ विसारी। सहज रवै वर कामण पिड़की गुरमुख रंग सवारी। जा रो ऐसी प्रीत कुटंब संबंधी माया मोह पसारी।

चौथा हर हर अमृत नाम देहु प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारी रहाओ जो जन दीन भए गुर आगै तिनके दुख निवारे अनदिन भगत करहै गुर आगै गुर कै शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस रसना रस रागा वह रस बीजारे गुर प्रसाद अमृत रस जीनिया उय पावह मुख द्वारे सतगुर पुरख जल चला मत जिस दृढ़ता नाम आधारी तिस आगे जियो देवो अपना हो सतगुर कै बलिहारी मनमुख भ्रम दूजै भाई लागे अंतर ज्ञान गुबारी सतगुर दाता अंदर न आवै ना उर्वार ना पारी सर्वे घट घट रविया स्वामी सर्व कला सत कल धारी नानक दासन दास कहत है कर कृपा ले हो बारे सारक महला चौथा गोविंद की ऐसी कारक माई जो कुछ करे सो सतगर मानो गुरमुख नाम राह हो लिवलाई राहो गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई अंदन रहस भया मन मनिया ज्योति ज्योत मिलाई जब गुण गाए तब ही मन तिपतै सांत वसै मन आई गुरु कृपाल भई तब पाया हर चरणी जित लाई मन प्रकाश भई हर ध्याया ज्ञान तत् लिव लाई अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई हृदय कपट नित कपट कमा बह मुख हो हर हर सुनाई अंतर लो महा गुबारा तह कूटै दुख पाए जब सो प्रसन्न भई।

हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतरयामी। सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ। हर घाट घटे घट बसता हर जल थले हर बसता हर थान थनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ। कोई आवै संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहि मार्ग दिखलावै। तिस जन के हाओ मल मल धोवा पाओ हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया गुरमुख हर मिलया। मेरा मन तन आनंद भई मैं देखिया हर राहु जन नानक कौ कृपा भई हर की कृपा भई जगदीशर कृपा भई। मैं अनदनु साधु साधु सदा हर जपया हर नाउ सारग महला चौथा।

हर गोविंद गुणी निदान सब श्रेष्ठ का प्रभु मेरे मन हर गुर हर पुरख अविनाशी रहा हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी हरे आप दयालु दया कर मिले जिस सतगुर सो जन।

सतगुरु से परम पद पाया उतरिया सकल विसवान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जाने प्रभ भावै तवै बुलान। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारक महला पंजवा अब

दासन की आज्ञा मानते नाही फोन कर परन भक्तन के डैलक मावत गाव दो काटे दागे जन्म मरण जा को भयो कृपाल पीठला तिन हार जार अजर जरन हर रस है अगाने साय समाने मुक्ति।

तुम ही सुंदर तुम है जाने तुम ही सुगर सुजाना। सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक नेमख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम्हें छत्रपा तुम।

तो दास तुम्हारे घास बढ़ावे कीत कबूला। जर नानक की प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर कह तुला सारक महला पंजमा रसना राम कहत गुण जो हम एक निम को पाए समापै देख चरित मन मोहं रहाओ।

गुरु साथे निमुख वचन प्राभीर है बस्यो सगल भूते लाथे रहाओ कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब लाद नाथे क्रास मोहे तेरी स्वामी और दतिया आस बराते नैन त्रिदासे देख दरसावा गुर कार धारे मेरा माथे कहो नानक मैं तुल सुख पाया जन मरण भय लाथी सारक महला पंजमा रे मूड़े आन काहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल विखाई रहाओ प्रभु सुंदर चतुर अनूप विधाते त्यो रोच नहीं राई मोहन स्यो पावन मन मोहे झूठ गौरी पाई भयोग दयाल दरपाल दुख हरता संतन स्यो बन आई सरण दान करै मैं पाई को नानक जूत समाई सारक महला।

राज संग संग बसरिया तोम गंभीर धीर उपकारी हम क्या बड़े जंतरिया गुर किरपाल नानक हर मिलियो तो मेरी सुख जे रैया सारग महला पंजमा मन ओए दिन स धन परवाना सबल दे करी संजोग सुहावे सतगुर संग ज्ञाना रहाओ धन सुभाग धन सुहागा धन देत जिन माना तय तुन तुमरा गे तनुमरा इयो इयो करवाना कोट लाख राज सुख पाए कि निमख देख पर पेख दृष्टाना जो कहो मुखो सेव ए बैसी है सुख नानक अंत ना जाना सारग महला पंजवा अब मोरो सहसा दू गया और उपाव सगल त्या छोटे सतगुर हण पया।

जैसे मात बताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना का ऊंचाई। कहो नानक मिले संत संगत ते मगन पहे लिवलाई। सारग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइय आसना अपना कहो की कीजै। सुखदाता प्रभु ध्याइय रहाओ सो कूख मंगल कहना जिसै घर तिसी सरणी पाइय। तिसै त्याग मानक जे सेवा तो लाज लून होए जाइय। एक ओट पकरी ठाकुर की गुरमिल मत बुद पाइय। गुण निधार नानक प्रभु मिलिया सगल चुकी मोहताइय। सारग महला।

खुशी अदा कर कह भी मान्यो। रहाओ कवन मूल प्राणी को कहिए कवन रूप दृष्टान्यो। जोत प्रकाश पई माटी संगत लाभ देव खान्यो। तुम ते शिव तुम ते जप।

गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे। गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गाव है इंद इदासन बैठे देवते आदर नाले। गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे। गावन पंडित पंड रखी सर जग जग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन पयाले। गावन रत्न उपाय तेरे आठ साथ

तारी जई तदना गावे है जो तद पावन रती तेरे भगत रसाली पूरे कीते गावन सी मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर क्या कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की कर है विभूत खिंथा काल कुआरी काया जोत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेश भगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग योग द्वैकार चलावे लेखे आवह भाग आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेश एका माई जगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तवै चलावै जिव होवै फरमान ओहो वेख्या ओना नदर नावै बहता एहो वडाण आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख हो वह लख वीस लाख लाख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश तराहे पत पबड़िया चढ़िया होए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा गिरीश नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सोपी ज्ञान विचार जोर न जगती छुटा संसार जिथ जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रती छत्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जिए जगत के रंग इनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार इथ सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िय रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोट आनंद शर्म खंड की वाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया न जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मातमान बोध तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन वह राम रहया भर पूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे नाहे मरह न ठागे जाहे जिनका राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लोग करह आनंद सच्चा मन सोए
ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਤਨਾਂਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਪਾਰ, ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਰਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ।

को साज करे तन खेह, गावे को जिय लै फिर देह, गावे को जापै दिसै दूर, गावै को वेख्या हाजर हदूर, कथना कथिन आवै तोट, काथ काथ कथी कोटि कोट कोट, दीदा दिला दे थक पाहि, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै बेपरवाहो। साचा साहिब साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ पार, आख्य मंगह देह देह दात करे दाता, फिर क्या गया रखिया जिद सा दरबार, महो के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला साच नाओ बढ़ियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक वह जानिया सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान, गाविया सुनिया मन रखिया भाव, दुख पर हर सुख पर लै जाए, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रहे आसमाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जेत पावन पाने के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखावन, कर्मा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जगचारी आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चला सब कोई, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै, के कीटा अंदर कीट करे दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत अगुण दे, देहा कोई न सजे जे तिस गुण कोई करे, सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तत् धौल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया ईश्वर वर्मा इंद, सुनिया मुख सा लाहन मंद, सुनिया जो जो तन भेद, सुनिया शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अरसठ का इशान, सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया शरा गुणा के गाह, सुनिया शेख पीर पात साह, सुनिया अंधी पावै राह, सुनिया हाथ हुवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, मने की गत कही ना जाए, जे को कह पछै पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मने सुरत होए मन बोध, मने सगल पवन की शोध, मने मोह चोटा ना खाए, मने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मने मार्ग ठाक न पाए, मने पथ शिव प्रगट जाए, मने माघ न चले पंथ, मने तुमसे की संबंध।

0: पांच जन है मन कोई, पांच प्रवान पांच प्रधान, पंचे का पहले पंचे सो है तारा जान, पंचा का कर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, करते कह कन्हे नहीं समा, तो संतोख था प्रख्या जन सूत, को बजा होगा सचकार, तब लाए ऊपर के तापार, धरती और पर और तस्ते पार, तलाए कमन जोर, जी जादरन का कहनाव, सबना लिखा बुरी कलाम, एह लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होए, केता तान साले वरू, केती दात जाने कौन कूद, कीता पसाओ एक को कवाओ, तस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख अवतार, असंख ग्रंथ कबीर पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भक्त गण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरम पाकसार, असंख मोह निर्वलाय तार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सदा असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़िया कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक खाए, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिने लिखे तिसर नाहे, जे फुरमाए ते ते पाए, जेता कीता तेता नाओ, वे नावे नाही को थाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी तो तै उतरस के, मूत पलीती कपड़ हुए, देसा बूंद ये उतरे, पर ये मत पापा कै संग, वो तो पहनावे कै रंग, पुन्नी पापी आख नाहे, कर कर करना लिख लै जाहे, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आव हो जाहो, तीरथ तप दयादत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मनाओ, सब गुण तेरे में नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कमन सुबेला वक्त कमन, कमन थित कवन वार, कमन सरती माहु कमन, जित हुआ आकार, वेल न पाया पंडती, जे हो वह लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां, जे लिखन लेख करान, तितवार न जोगी जाने, रतमा न कोई, जा करता सल्टी को साजे, आपे जाने सोई, केव करे आखा केव सलाही, क्यों वनी केव जाना, नानक आखन सब को आखे, एक दू एक स्याना, वड्डा साहिब।
1: सहस अठारह कहन कते बा असलू एक तात लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला है ती सुरत ना पाइया नदिया तै वाह पवे समुंद ना जानिए है। समुंद साह सतान गिरहा से ती मल माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे दिस मन होना विसरे अंत न से।

जे बड़ पावे ते बड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले।

विचारे। गावे ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माछ प्याले। गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे।

जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरम साल तिस विच जी जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत।

तिथे भगत वसै के लोए, करहे आनंद सचा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल।

ऐसा ध्यान करत नहीं मानं सुरा पवित्र नत अवर जल रे सुर सरी मिलत नहीं हो आनंद तरन धार पवित्र कर जानिए रे जैसे काकरा करत विचार भागत भागो लिखिए दे उपरे पूजिए कर नमस्कार मेरी जात कुट बंडला ढोट बंता दे बानारसी आस पासा।

जय से तरबर की तो छाया खन मैं बिनस जाए देह पीत हमरे प्रयान प्रीतम जन उत्तम जन मिलया मन होए प्रतीत परचय राम रव्या घट अंतर अस्थिर राव।

रहाओ साजना शांत आओ मीरा रहाओ आनंदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परी रह संत चरण तरो माथा संत नागरे हुए अंधेरा संत प्रसाद कमल।

बूढ़ संसार सागर उतरे हर सिमर रतन नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकर प्रा मेरा दीन दर्द नवार तारा हर कृपा निध पत उदारन कोट जन्म दुख पर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजमा तन हो प्रीत चरण लग संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी राह मोहे नाथ दास जन तेरा वरुण सकली मोहे त्यागी पर

ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जो कौ बेतै रहाओ दुख नाहीं सब सुख ही है। रे एकै एकी नेतै बुरा नहीं सब भला ही है। रे रार नहीं सब जीतै सोग नाहीं सदा हरखी है। रे छोड़ नाहीं किछ लेतै।

सहज सुभाए अपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिले हो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कतहु ना जाए कर बसाए गुण निधान प्रगटे ही चोलै चरण लुभाए अणत जाए थान थनाए सर्व समाए रसिक रसिक नान गुण बोलै कारणा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन उन्दराई परमित रूप गम गोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन भवनाही पायो पायो अनकोत चतराई जतन जतना।

खर्च लै पत पावे गो, खाई खर्च देवे बहु तेरा राधे ते दूट न आवे गो। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुर सरणी पावे सरणाई पावे गो। नानक दया दया कर दीनी, दुख दालत पांच समावै गो। कानड़ा महला चौथा, मन सतगुर सरण ध्यावै गो। लुहा हिन होवै संग पारस, गुर पारस गुण पारस को।

गुरमत गुरमत गुरमत गुरमत ध्यावै है हर गल मिल मेल मिलावै गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचै नाम ध्यावै गो। हर हर रूप हो पै हर जन को पूज करावै गो सागत नर सतगुर नहीं किया ते बेमुख नाम भरमावै गो। लोभ लहर स्वान की संगत बिख माया करंग लगावै गो राम नाम जग जग का तारक लग संगत नाम ध्यावै गो नानक राख राख प्रा मेरे सत्संगत राख समावै गो। कानड़ा शांत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद से उतरे जन नाम ध्याए जतन माया के कामना आए राम ध्याए सब फल पाए धन धन दे बड़ भागिया सत्संग जागे राम लाग नागे स्यो लिव लागिया तज मान मोह विकार साधु संगत रो तिन कह गवाए बलवंत नाग सरण स्वामी बड़ भाग दर्शन पाए। मेरे साधु नित भजे नारायण रसक रस स्वामी गुण गाय जीवै हर अम्यो पीवै जन्म मरण भागै सत्संग पाईऐ ते हर ध्याईऐ बोहड़ दुख ना लागै कर दया दा ते पुरख बधाते संत सेव कमायण बिनवंत नानक जन धूर बाछै हर दरस सहि समायण सगले जंत भजो गोपालै जप तप संजम पूरन घालै नित भजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सवाया गोविंद गाई।

नाउ तेरा अमृत बेख उठ जाई, नाय तेरे सब सुख वसै मन आई। बिन नावै वादी जमपुर जाई, नारी बेरी घर दर देस। मन किया खुशिया की चह वेस, जां सदे दान ढिल ना पाए। नानक कूड़ कूड़ होए जाए, प्रभाती महला पहला। तेरा नाम रतन करम चानन।

निज संदा अंतर रवतो राज रविंदा प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम और तारी दीना नाथ पियो बनबारी अनदन नाम दान प्रतकारी तृप्त तरंग तत बिचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए हे मोर अंतर वसै चुकै मैं मोर किसे भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन जाख्या पूरा पद होए नानक दा प्यो तान सुख होए प्रभाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया अवर्ण रंग अनहारा एनस जिया देख संभाले।

पाया पार ब्रह्मृत माही समाया। राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण सरण आया। रहाओ चूका गुण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार। हर प्रेम भगत मन तन सद राता।

मरन जीवन की शंका नासी, आपन रंग सहज प्रगासी। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा। रहाओ जहे आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लेवल तत लुकाना।

कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात बीत हित बंधव कतंच मोह कुटंब्यते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरण नानक लब्धं अच्युत तनह त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिगंत स्नेहं प्रात बांधवह त्रिगंत त्रिग स्नेहं बनता विनाश सुतह त्रिग स्नेहं गृहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं कीनंत बालनं वर्धंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आतिथ्य पवनं गणंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तत आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चर्मण है नवंत द्वारं पीत कहतं बाय रूपं अस्तंभण है गोविंद नामं मह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरं दुर्लभ देह उद्रंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुबंत तोयं अच्युत।

अणक सासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या क्रोत। हे लोपा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते ताबंत जिया बहु प्रकार अणक भांत बहु डोलते। नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लज्जया अकरणं क्रोत अखाद्य खादं असाज साज समझया।

आत्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अणक माया विस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म भयान उद्यान रमणं महा बिकट असाध रोगण है। वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरो। हे संसार ताप हरण है करुणा मह सब दुख हरो। हे सरण योग दयाल है दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है। चरण कमल सरणं रमणं गोपाल कीर्तन है। साध संगेन तरणं नानक महासागर भैद उतर है। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्तकाया रख्या परमेश्वर है। आत्म रख्या गोपाल स्वामी धन चरण रख्या जगदीश्वर है। सर्व रख्या गुरदयाल है भय दुख विनाशन है। भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचुत है। जेन कला धार्यो आकाशं वै संतरं काष्ठ वेष्टं। जेन कला सा सूर नक्षत्र ज्योतिं सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं महशे दंत जठर रोगण है। तेन कला अस्थंभं स्रोवरं नानक नहश जंत त्रंग तोयन है। गुस्साही गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन है। लब्धं संसंगेन नानक स्वश मार्ग हर भगतण है। मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं त्रंत पपील कह सागरं लंघंत पिंगं तं प्रगास अंध कह। साध संगेन सिमरंत गोबिंद सरण नानक हर हर हरे। तिलक हीणं जथा विप्रा अमर हीणं जथा राजन है। आवध हीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैसुण है। ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामंग अश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंद है। बसंत साध रिद्यं अचत भुजंत नानक बड़भागी है। उद्यान वसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है। बिखम स्थान मन मोह मदिरं महा असाध पंच तस्कर है। हीत मोह पै भरम भ्रमणं अहंकास तीक्षण कठिन है। पावक तो असाध घोरं अगम तीरण है लंघन है। भज सा संग गोपाल नानक हर चरण सरण उद्रण कृपा। कृपा करंत गोबिंद गोपाल है सगलं रोग खंडन है। साध संगेन गुण रमत नानक सरण पूरण परमेश्वर है। श्यामलं मधुर मानुख्यं हृदयं भूम वैरण है। निवंत हो वंत मिथ्या चेतनं संत स्वजन है। अचेत मूड़ा ना जनंत कटंत सासा नित प्रते। श्रीजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते रचंत पुरख है कुटंब।

पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पतत पुनीत कत है नहीं सेवियै झूठे रंग खुआर कहां लग खेवियै हर चंदोरी पे काहे सुख मानिया हर हां हो बलिहारी तिन जे दरगह जानिया कीने कर्म नेक गवार विकार कण महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण नह जानई हर हां हर चंदोरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजै औद तसै कौन राखई वैदक अणक पाव कहां लो भाखई एको चेत गुवार काज तेरा आवई हर हां बिर नावै तन शार वृथा सब जावई औखद नामे अपार मोलक पीजई मिल मिल खावै संत सगल को दीजई जिसै प्राप्त हो।

सम्मण जो इस प्रेम की दम के होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहा बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे।

कबीर डगमग क्या करह कहां डुला वह जियो सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो कबीर

होई मर मर जाए। कबीर अमरह को उपदेशते मुख में पर है रेत, रास बिना निराखते खाया घर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ पी भूसी खाओ, होन हासो होए है साकत संग।

पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हुके ना है जिन्हें रचन रचाया तसी मह समाए कबीर की चढ़या टागर परया किशु ना आयो हाथ पीसत पीसत चापया।

जगत पिता है सब प्राण को आधार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जीह क्या बखाने हां कै बल बल बल बल सद बलिहार। अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपर अपार पर। आपनो पावन कर मंत्रणा दूसरो धर ओपत पर लो एकै निमख तो कर। आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राश्त जाहे नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जीह क्या बखाने हां कै बल बल बल बल सद बलिहार।

तै माण्यो सत युग तै माण्यो शलियो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्रसैन को राज अभय भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आदि पुरख फुरमायो गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावै सम लोचन भगत बीण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवरना जाणै सुख देव परीक्षित गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सजस नानक गुर नित नवतन जग छायो।

ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाण्यो। जप कल सजस नानक गुर सहर जोग जिन माण्यो। गुण गावह नवनाथ धन गुरसार समायो। मान धाता गुण रवै जीन चक्रवै कहायो। गुण गावै बल राओ सप्त पाताल बसंताओ। पार्थर गुण उचरै सदा गुरसंग रहंताओ। दूरबा प्रूरो अंगरै गुर नानक जस गायो। कप कल सजस नानक गुर घट घट सहर समायो। सवैये महले दूजे के दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो। ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो। छज सुरनर गण मुन बोहय आगाज। मार्यो कंटक काल गर्ज धावत लियो वर्ज। पंच भूत एक कर राख ले समझ। जग जीतो गुरद्वार खेलह समत सार। रथ उन्मन लिव राख निरंकार। कहो कीरत कल सहार सब।

ब्रह्मांड तारे जह नाम समाध्यो हर सोग सम कर सहारे नाम सिरोमण सर्व मैं भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीणा जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत वैकुंठ बीणा पर सह संत प्यार।

सुख लह है ते नर संसार में है अब है पट रिप मद तह सक्यात तै नर जाल पपणे गुर अमरदास सुप्रसन्न जह तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो नयन बयन मोह एक एक दूह थाए ना जानियो सुपन एक परतख।

जय मत गही जय देव जय मत नामै सम्माणी जय मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध त्रिसना तजी सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुगत गुरे अमरदास परसी है पुहम पातक बिनास है गुरे अमरदास परसी है सिद्ध साधिक आसस है गुरे अमरदास परसी है ध्यान लही है पौ मुक है गुरे अमरदास परसी है अपहो लभै गह चुक है इक बिन दुगन ज्योत रह जां सुमंत्र मन वह लह जालपा पदार्थ इतड़े गुरे अमरदास डिठै मिलह सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहयो ताते अंगद लहना प्रगटतास चरण है लिव रहे ओ तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत न जानो बोहथो विधाते निर्मयो साब संगत कुल उदरण गुर अमर

जग मंडल करियो। जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जह सिख है संग्रहयो तात हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरियो, अंगद लहणे संग हुअ, गुरु अमरदास तारण तरण, जन्म जन्म पा सरण तू।

जगत उदाहरण पायम जगत उदाहरण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी विखय निवारण सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे।

संपत रिद अरसिद न छूटियो साथ। दान बड़ो अदवंत महाबालो सेवक दास कहो एह तथ ताहे कह प्रवाह काहू गी जा कै बसीस धरियो गुरहत।

दर्शन परस कह मथुरा अमृत बहन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिख हो नैन सात रूप सत नाम सात संतोख धरयो ओर आदि पुरख प्रताख लिखयो अक्षर मस्तक तोर प्रगट जोत जाग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो पार मथुरा मूर सदा थिर लाए चेत सनमुख रहो काल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो तेज।

हर पूर्ण ब्रह्म निवास लेवम। जावलो नहीं भागद लार उदय तावलो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल कूर समुद्र में बूढ़ थे कभू मिट है नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो। जप योजन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न

सतगुरु प्रसाद अभ्यागत इह न आखिय जिनके मन मह भरम तिनके दिते नानका जेहो जे तेहो जेहा धर्म अभय निरंजन परम पद ताका भीख हुए तिसका भोजन नानका विरला पाए कुए।

जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काहो, आप हाथ दै मुहि बचावहो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा ने करदै करियै, सब बैरन कुवार संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा।